अड़या लोक मारी देता ने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडियां खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किस

आई। जो दुनिया पत्थर मारे हसी ओ भी हंस हंस खा बैठे, तेरी खातर सजना हसी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द न जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरा च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया। हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे, पहनने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सौरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई। जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई पटो

0: खंडाई चुक लतीये चाके जिथे लेखा चोक खंडाई जा सारे करतीये ले जा लड्डा परी विदाई जा सारे करतीये ले जा लड्डा परी विदाई। धन्यवाद जी।
1: हरजीत रूपी तों बाद हुण मैं जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे इतिहासिक पिंड दसांझ कलां दे शायर राम प्रकाश टोनी जी नूं सदा देण जा रहे हां कि ओह आण ते अपनी रचना जिहड़ी आ साडे स्रोतियां दे नाल सांझी करन। ते ओह लिखदे ने जिंदा जिस दी जमीर है। राम प्रकाश टोनी जी तुहाडा स्वागत है।
2: सत्कारयोग साथियो मेरी रचना है जी जिंदा जिस दी जमीर है। जिंदा जिस दी जमीर है आदमी ओ अमीर है कीते जिसने बड़े कपड़े कीते जिसने बड़े कपड़े बनया ओ कल वजीर है बनया ओ कल वजीर है। अमीर सी सभ्याचार साडा अमीर सी सभ्याचार साडा गायका कीता लीरो लीर है गायका कीता लीरो लीर है। पहला पाले घोगड़ बिले पहला पाले घोगड़ बिले हुण सीने मारदा तीर है हुण सीने मारदा तीर है। दुध त सारा डेरी जावे दुध त सारा डेरी जावे ताइयों काना शरीर है ताइयों काना शरीर है। सुधर जांदे बड़े बड़े सुधर जांदे बड़े बड़े डंडा लुच्चियां दा पीर है डंडा लुच्चियां दा पीर है। घर घर रांझे जमदे ने घर घर रांझे जमदे ने पिटदी फिरदी हीर है पिटदी फिरदी हीर है। कातल दे गल फुल पैंदे कातल दे गल फुल पैंदे सच दे अखी नीर है सच दे अखी नीर है। असीं इक्को मां दे जाए हाँ असी इको माँ दे जाए हाँ बिच मजमा पाई लकीर है बिच मजमा पाई लकीर है। टोनी जो हक्कां ले लड़दा है टोनी जो हक्कां ले लड़दा है दसांझ ओ बहादुर वीर है दसांझ ओ बहादुर वीर है। धन्यवाद जी।
1: राम प्रकाश टोनी तो बाद हुण मैं कपूरथला बसदी साडी शायरा रजनी वालिया नूं कामे फल दे विच सदा देण जा रहे हां। रजनी वालिया जी अपनी कविता विच लिखदे ने मिट्टी नाल मुहब्बत हो गई। आओ प्यारे श्रोते देखिए ओ किवें मिट्टी नाल मुहब्बत करदे ने। रजनी वालिया जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।
3: नमस्कार जी मैं रजनी वालिया कपूरथला तो अपनी रचना लेके हाजिर हाँ मिट्टी।

मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

0: ద్వాపర రేడియో.
1: जी दोस्तों सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निका स्वागत है। माफी चाहते अज दोस्तों काफी मुशक्कत घोल के काम करके टेक्निकल इशू दे नाल

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा, हथेलियों की ही ना या

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

0: बस
1: तो एक जो
0: जी,
1: लास्ट वाली गाने है ना,
0: थैंक यू जी, बहुत
1: नहीं
0: बहुत शुक्रिया।
1: एक
0: हाँ
1: नहीं नहीं
0: जी
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक लाइन
0: नहीं
1: हो रह
0: है
1: गई जी।
0: जी,
1: मैं
0: वो
1: जी
0: सिकंदर
1: मेन
0: क्या
1: लाइन
0: था
1: और रह गई
0: जिसने जी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मेन लाइन रह गई। ओके ना,

0: वाह जी वाह जी,
1: जी थैंक
0: थैंक यू
1: यू
0: मोहम्मद
1: सो
0: जी,
1: मच,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक
1: शुक्रिया,
0: यू, सत श्रीकाल जी,
1: हमेशा जिंदे वास्ते रहो वीर भुपिंदर जी, सत श्री अकाल।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया, सत श्रीकाल। लो दोस्तों, इस मोहम्मद जी जुड़े सन ते अगलियां खबरां दे वल नूं वधदे आं ते कहानी दा वादा तुहाडे नाल कीता होया, इक कहानी सुनाउणी है। ते दूसरे पासे पंजाब दे विच कहिंदे पाणी वध रिहा है ते मीह जिहड़ा 36% घट पिया ते पाणी पता नहीं कित्थों वध गिया जी। ते देखदे आं रैड जोन दे विच सारा कुछ चल रिहा है, पर एक पासे पॉजिटिव भी देखा जा सकदा, ते पर इन्हां चीजां नूं मैनूं लगदा हले चुप वट्टी रहनी चाहीदी है, क्योंकि पंजाबियां नूं खास करके जदों आपां कहिंदे आं भी आह कम ना करो तो उदों उन्हां ने करना है, ते हुण थोड़ी जी ठल पैणी शुरू होई है, ते भाई उस चीज़ नूं बरकरार रखो। ते इह जिहड़ियां रिपोर्टां ने खबरां ने। ते दूसरे पासे कनेडा की गल करदे आं थोड़ी जी, कनेडा दे विच पंजाबी विद्यार्थियों के लिए वड्डी खबर जिहड़ी सामने आ रही है, MITT कॉलेज जिहड़े ने बंद होने जा रहे ने। सितंबर आउंदे ही कनेडा दे कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे कैंपस नवे चेहरियां दे नाल भर जांदे ने, पहला भर जांदे सी पर हुण हत्थ दे विच दाखले दी फाइल, मोढे दे उत्ते बैग ते अखां दे विच वड्डे सुफने, इन्हां चेहरियां दे विच पंजाबी नौजवान भी जिहड़ा वड्डी गिनती दे विच हुंदे सन, पर हुण कैंपसां दे विच जिहड़ी है इह रौनक घट हो गई है। फैडरल सरकार दे वल्लों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लई लागू कीते जिहड़ा कैप है, सीमा जिहड़ी बन्न दित्ती है, उहदा असर हुण सिद्धा सिक्ख्या संस्थावां दीआं क्लासां ते खातिआं दे विच दिखाई देण लग पिआ। इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनेडा दे अंकड़िआं दे मुताबक 226 दे पहले 6 महीनिआं दे विच सिर्फ 22,405 नवें अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कनेडा पुज्जे ने। सरकार ने पूरे साल दे लई 1,55,000 नवें विद्यार्थियों का जिहड़ा टीचा रखिआ। यह सिर्फ दाखलियां की कमी नहीं सगो कई कालजां दे लई वड्डा जिहड़ा वित्ती झटका भी है। साल 2024 दे विच 2,92,885 नवें अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कनेडा आए सी। साल 2025 दे विच अंकड़ा घट के 1,15,005 रह गया ते सरकार इस नीति नूं रिहायश, सेहत सेवावां ते बुनियादी ढांचे दे उत्ते दबाव घटाउण दे लई जरूरी दसदी है, पर जिन्हां संस्थावां दी आमदन अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की फीस दे उत्ते टिकी सी उन्हां दे लई इह नीति हुण संकट दे रही है बन गई है। विनीपैग दा मैनीटोबा इंस्टीट्यूट आफ ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी जिहड़ा है MITT इस बदलाव की सब तो स्पष्ट मिसाल बनता है। ट्रेड्स एंड तकनीकी सिक्ख्या दे लई पंजाबी विद्यार्थियों दे विच प्रसिद्ध रहे MITT ने अपनियां सरगर्मियां हौली हौली समेटण दा फैसला कर लिया। संस्था दे अंतरराष्ट्रीय दाखलों दे विच 55% तो जिहड़ा वध कमी आई है, जिसके कारण इसका मौजूदा वित्ती माडल टिकाऊ नहीं रहा। MITT की कार्रवाई बंद होण दे नाल इस दे चुने हुए जिहड़े प्रोग्रामां ते कैंपस की जिहड़ी है जिम्मेवारी रैड रिवर कॉलेज जिहड़ा पोलीटैक्निक जिहड़ा RRC पोलीटैक्निक संभालेगा, ते पतझड़ जिहड़ी है 226 तों दोवें संस्थावां साउथ विनीपैग कैंपस तों मिलके काम करनगियां। MITT मौजूदा विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी करवाएगी, जबकि RRC जिहड़ा पोलीटैक्निक नवे जड़े ने विद्यार्थियों नूं दाखला देवेगा। मौजूदा विद्यार्थियों दे लई राहत दी गल ए भी है कि वह अपने प्रोग्राम पूरे कर सकणगे ते उहनां नूं MITT दी ही जड़ी डिग्री डिपलोमा जड़ा मिलेगी। हेलो बे अते फुलटज बुलेवार्ड दीआं जड़ियां ने इमारतां आउण वाले समें दे विच RRC पोलीटिकल जड़ा अपना हैगा पोलीटैक्निक ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ MITT ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ

अद्धी रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तरों लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी। तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज किसे।

0: हाय जे तू बिछड़ गई ता छाथू रोया भी नी जाना।
1: क्या
0: जे
1: बात है,
0: तू बिछड़ गई ता छाथू रोया भी नी जाना।
1: क्या बात है।
0: जाने वाली नी जरा ठहर जा, काली पेंदी कदे मानू रोकनी, साडा की बनूंगा कुछ सोचनी, साडा की बन

0: काली पिंडी कदमा नू रोकनी,
1: वाह
0: साडा की बनूंगा कुजी सोचनी, साडा की बनूंगा कुजी सोचनी।

0: उपलांचे सानू मेने देणगे, ना तेरा लेके पैड़े लोकनी,
1: वाह
0: साडा की बनूंगा जरा सोचनी, साडा की

जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा। जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। जात

रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा, जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा, जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। जात